अभी मैं जो गीत गाने जा रहा हूं वो स्वामी को बहुत अच्छा लगता था। पहली बार मैंने 70th बर्थडे पे उनके गाया था तो बहुत बहुत खुश हुए थे, तो वही गाना मैं पेश कर रहा हूं। ये गाना उनके चरणों में मैं समर्पित करता हूं।

0: ஓ அன்பின் வடிவமே, இன்று நன்றி கூறும் விழா என்று சொன்னார்கள். ஆனால் உனக்கு எதற்கு நன்றி சொல்வது, எப்படி நன்றி சொல்வதென்று தெரியவில்லை சுவாமி. உயிர் கொடுத்து உடல் கொடுத்தாயே, அதற்கு நன்றி சொல்வதா? கல்வியும் ஒழுக்கத்தையும் கொடுத்தாயே, அதற்கு நன்றி சொல்வதா? இதனைத்திற்கும் மேல் நீ உன்னையே எங்களுக்காக அர்ப்பணித்துக் கொண்டாயே சுவாமி, அதற்குதான் நன்றி சொல்வதா? சுவாமி, நீ எங்கள் மேல் வைத்திருக்கும் அந்த அன்பு எங்களால் வார்த்தைகளால் கூற முடியவில்லை சுவாமி. அந்த வானத்தையே ஒரு காகிதமாக்கி இந்த பூமியையே ஒரு பேனாவாக்கினாலும் நீ எங்கள் மேல் வைத்திருக்கும் அந்த அன்பு எங்களால் வர்ணிக்க முடியாது தாயே. சுவாமி, நாங்கள் உன் கையை பிடித்துக் கொண்டால் என்றைக்காக இருந்தாலும் விட்டுவிடலாம். அதனால் நீ எங்கள் கையை பிடித்துக்கொள் சுவாமி, நீ எங்கள் கையை பிடித்துக்கொள், கெட்டியாக பிடித்துக்கொள்.
1: In a book that my life is, a page contains these words: "This is a new beginning." That was when I saw you for the first time. I wondered how large those eyes could get. I would ask myself what lies behind that magical smile. But Swami, never did I imagine that one day you would pull me towards Prashanthi Nilayam to study at your lotus feet, to be one among your students. Swami, can we count our blessings? People from all over the world are inviting you, praying to you and requesting you, Swami, please come to our land. You never go anywhere, but you came to the indoor stadium to see a small, insignificant match, just to see your children play. And how can we forget those days when you sat here for hours and hours just to encourage us and make us learn Rudram? When I stand in front of you, I know that it is not because we deserve to be here, but it is only because you love us more than we can ever love you. We have nothing to give you except our hearts filled with love and gratitude.
2: स्वामी, अशी एक म्हण आहे की देव आणि भक्तामधला अंतर फक्त एक प्रार्थने एवढाच असतो. पण स्वामी, तुम्ही तर प्रार्थनेपूर्वीच आमच्या रक्षणा करता आले. त्या दिवशी जेव्हा आमची कार दगडांवर आदळली तेव्हा आम्ही कोणीच आपले स्मरण केले नाही. पण मात्र कार ही उलटूनही सरळ कशी उभी झाली, आम्हाला मुळीच इजा कशी झाली नाही, या प्रश्नांचे उत्तर फक्त स्वामी तुमच्याजवळच आहे. स्वामी, या जीवनातले अनमोल धडे आम्ही तुमच्याच चरणी शिकले आहे. या 7 वर्षांमधील प्रत्येक क्षणाचा अनुभव खूपच मौल्यवान आणि अमृतासारखा गोड आहे. स्वामी, या क्षणी आम्ही फक्त एकच प्रार्थना करतो की या जन्मासारखं आम्हाला प्रत्येक जन्मामध्ये तुमच्याबरोबर राहण्याची व तुमची सेवा करण्याची फक्त एक तरी संधी मिळावी. जय सायराम.